फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

0: आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 6 बजे हैं, समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

0: श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई है। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता, श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 का समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का है। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित होगा अभिनेता जगदीप पर। सुबह 10 का समय है पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम का। इसमें सुनिए अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत। सुबह 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 का समय सखी सहेली इस कार्यक्रम का है। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवा

गाया जाएगा। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 7 बजे कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसके अंतर्गत नाटिका नैहर छूटो जाए। इसके लेखक हैं अरविंद नीमा और निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर। रात 10 बजे छाया गीत कार्यक्रम, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे का समय है रंग तरंग कार्यक्रम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 243।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 243। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, और अब हम 8वीं कड़ी पर पहुंच गए हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि आपका एक बहुत मशहूर गाना है पंचमदा का 1942 लव स्टोरी, और आपने विशाल भारद्वाज के साथ माचिस फिल्म में है बांसुरी की तान, और जुदाई में है, तो ये इतनी सारी फिल्मों में आपने बांसुरी की तान छेड़ी है, कुछ आप इन गानों से जुड़ी, इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई अपनी नायाब यादें ताज़ा करें, साझा करें।
2: जी, जुदाई फिल्म में दरअसल नदीम श्रवण का म्यूजिक है
1: जी।
2: और

0: जी
1: मुखड़ा अपने आप में इतना
0: क्या
1: मुश्किल,
0: बात है।
1: और हुआ क्यों कि दो तीन बांसुरी वादक गए वहां और वो बजा नहीं पाए, पीस इतना मुश्किल था।
0: जी
1: तो कैलाश मेहता करके एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो मिनीकॉर्ग में बीन की आवाज निकालते थे, उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। और उसमें कुछ टाफू ब्रदर्स बोलते हैं,
0: जी
1: एक ताफू खान तबला प्लेयर है और एक ताफू ब्रदर जो दूसरा

0: भाई अकोटेन प्लेयर है। तो जो दूसरा भाई है वो आया हुआ था, तो उनके सामने एक ऐसा एक होता है कि हिंदुस्तान की लाज कौन रखे। तो बात तब देश पे आ गई, तो कैलाश ने कहा वो रोनू मजुमदार को बुलाओ, वो ठीक कर देगा सबको। तो
1: क्या बात है।
0: वो कैलाश ने पता नहीं, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, नीचे से फोन किया, तू करके ही बात करता था मेरे साथ, तू कहाँ है? मैं बोला कैलाश भाई मैं तो घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आजा जल्दी सुदीप स्टूडियो में, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, और तू बता दे इन लोगों को कि तू क्या चीज है। मैंने बोला अरे यार ऐसी क्या बात, वो हम तो गुलाम अली के साथ इतना काम किया। बोले बस इसीलिए तो
1: जी।
0: बुला रहा हूँ, तूने गुलाम अली जी से वाह वाह ले लिया है तो और क्या चाहिए, गुलाम अली से तो बड़ा नहीं है ना ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: मैं स्टूडियो पहुंचा, तो पहुंच के उन्होंने तो 5 मिनट तक तो मुझे अपना हारमोनियम ही सुनाते रहे। मैंने बोला कि इनको सुनना है मुझे कि नहीं, पहले पूछ तो लेना चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती क्यों सुना रहे मुझे। फिर मैंने टोक दिया बीच में, मैंने कहा कि मुझे ये सब जो आप बजा रहे हैं ये सब बजाना है क्या, तो ये सब मैं लिखूं? बोले नहीं नहीं आपका पीस तो अलग है। तो मैंने कहा फिर तो वही बताइए ना जो मुझे बजाना है। तो जैसे ही बजा तो मैंने लिखने लगा, तो बोले लिखिए मत। मैंने कहा नहीं मैं लिखूंगा जरूर ताकि आप बदल ना सके। हाँ
1: क्या बात है।
0: लिख लूंगा तो
1: बढ़िया।
0: मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था।
1: जी।
0: जब उन्होंने पूरा लिखवा दिया, 2 टेक में मैंने बजा दिया।
1: क्या बात है।
0: तब से वो फोन करते थे मुझे, और गुलाम अली भाई तो फोन करते ही थे, उन्होंने भी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी। वो कहते सन ओ रोनू भाई ओ दूजा जरा आंदा है ओनू पता नहीं पंजाब घराने दा, तुसी आओगे तो चंगा रहेगा। ते
1: क्या बात है।
0: बहुत ही प्यार। तो जुदाई का ये किस्सा, और माचिस का किस्सा मैं खास करके आपको ये बताऊं कि पंचमदा जाने के बाद 3-4 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था फिल्म लाइन के प्रति। मेरा मन उचाट जो बोलते हैं ना एक शब्द है, एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था कि मैं फिल्मों में क्यों बजाऊं, मैं अपने सोलो प्रोग्राम करूं वही अच्छा है। फिर फोन आ गया गुलजार साहब का, और गुलजार साहब की आदत है कि कोई बंगाली है तो अपने से छोटा भी है तो उसको दादा ही कहते हैं।
1: अच्छा,
0: आज भी गुलजार साहब मुझे दादा कहते हैं,
1: क्या बात है।
0: वो उनकी
1: भारी सी
0: बैरिटोन भारी
1: आवाज।
0: सी आवाज।
1: हाँ बिल्कुल
0: कहाँ है हुजूर दादा, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं इंडस्ट्री
1: जी।
0: में। भाई जी प्रणाम। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक नए लड़के को चांस दे रहा हूँ, उसका नाम है विशाल
1: विशाल भारद्वाज।
0: भारद्वाज,
1: जी
0: आप इस फिल्म में बजाइए। मैं जब गया वेस्टर्न आउटडोर, पहला पानी पानी रे, मैं बिना तबले के ये बजा
1: जी
0: रहा हूं,
1: जी
0: इस दर्द को देखिए।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब लगता है कि गाना भी सुनवाना पड़ेगा। हाँ
1: ये
0: जी
1: गाना लोगों को सुनाई, उसके पहले मैं एक बात
0: जी
1: विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बहुत माचिस से पहले बजाया, मगर कभी स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया था, और सीडी में उन्होंने क्रेडिट पे मेरा नाम दिया। माचिस का पूरा बैकग्राउंड

0: ला ला ला ला ला ला, सब गाना मैंने बजाया। और बैकग्राउंड में एक यादगार किस्सा है जिसमें टब्बू जो है वो साइनाइट की गोली चंद्रचूड़ के मुंह में दे रही
1: जी
0: है,
1: दे रही
0: वहां
1: है।
0: का मेरा बजाया हुआ राग मारवा, उसमें वो किस्सा। मैंने कहा गुलजार साहब इस सीन को मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने कहा दादा आप बजाइए तो सही, ये

0: वाह, राग मारवा में ये बांसुरी की तान थी फिल्म माचिस, और अद्भुत, आपने तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी। तो अब इसके बाद हम क्या गाना सुनवाएं या फिर?
1: मैं चाहता हूं कि पानी पानी रे इस गाने को लोगों को सुनाइए, क्योंकि उसमें तीन फ्लूट मैंने डबिंग किए थे जो एक साथ अभी बजाना संभव नहीं, तो एक्चुअल जो मैंने बजाया उसको लोग सुन लेंगे तो। और दीदी
0: जी
1: की वो मखमली और वो शहद से टपकती हुई वो
0: आवाज
1: आवाज
0: जी
1: जो लगता है कि माँ सरस्वती गा रही है।

0: रुनुदा, एक गाना है गीत फिल्म का, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। और जब हमारी बात हो रही थी फोन पर तो आपने इसका जिक्र भी किया था। बड़ी सुंदर बांसुरी है उसमें, और बांसुरी वादक का रोल किया है राजेंद्र कुमार ने ना।
1: जी जी जी
0: तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को एक टुकड़ा सुनाएं?
1: उस पीस को हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत छोटे थे जब हम लोग,
0: जी।
1: तो हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी ने उसको बजाया। उसका जो पीस है वो पंचम को सा करके बसता है,
0: जी।
1: तो उसका टेक्निकली भी फ्लूट प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे वो बजा।

0: वाह, अद्भुत तान
1: ये
0: छेड़ी आपने।
1: मुझे मुझे भी डर
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो पीस मुझे याद है कि नहीं, मैं इस पीस को कितने सालों बाद बजा रहा हूं, मगर शुक्र है कि मैं बजा
0: बहुत
1: सका।
0: अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, ये जो घड़ी की सुई है ना, ये हम सबको बहुत बाध्य कर देती है, तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
4: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों की आवाजों में, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रतन फिल्म का गाना, जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाज़ें हैं। डीएन मधुक का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत है नौशाद अली का।

रतन फिल्म का गाना आपने सुना जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाजों में। कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए आर पार फिल्म का ये गाना, जिसे गीता दत्त ने गाया है, बजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत तैयार किया है ओपी मैयर ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरी गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम बूट पॉलिश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत है शर्त फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, संगीत भी हेमंत कुमार का है, गीत SH बिहारी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। दीवार फिल्म का गाना सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है।

किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए खेल खेल में, इस फिल्म का गाना। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: दोस्तों, आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई खय्याम ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाए जाएंगे एक ब्रेक के बाद।

अंतराल के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अब आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सेट उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल

0: परीक्षण किया। गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्म समीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों, जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है ये मणिकर्णिका फिल्म का गाना, शंकर महादेवन की आवाज में, प्रसून जोशी के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में दबंग फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, जलीस शेरवानी के बोल और संगीत साजिद वाजिद का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इस फिल्म से है। मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और संगीत है प्रीतम का।

ब्रेक के बाद लीजिए, अब सुनिए आशिकी 2। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, संदीप नाथ ने इस गीत को लिखा और धुन बनाई अंकित तिवारी ने।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

1960, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। दो कलियां ये फिल्म तो आपको याद ही होगी, दोहरी भूमिका इसमें उन्होंने निभाई थी। और इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों के हम नाम ले सकते हैं, यादों की बारात, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश जानी दुश्मन, काला पत्थर, ऐसी कई फिल्मों के नाम इस समय हमें याद आ रहे हैं। तो जन्मदिन की बहुत सारी उन्हें शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम का अगला गाना चीनी कम, इस फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल की आवाज, समीर के बोल और संगीत है इलैयाराजा का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना, मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में। कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली, ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पुराना।

29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे

0: बहुत कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चीन, पोकली, दादर, लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा?
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
2: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
3: कहाँ जा रहे थे?
2: बगदाद
3: है?
2: अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
3: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है, सेट सेट सड़ा, क्या जान से मार देता है।
2: हाँ चल, चलता है
3: ना बाबा?
2: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
3: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
2: अरे जूता पॉलिश करके, आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया, हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दीमी है ना पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते के धरवा और कस के दो दिए लबाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई तो जरा सुधाई कर दी, जटा जट बहुत मारा।
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
3: क्या कहा?
1: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
0: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।

जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं।

0: हैं।
1: देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के
0: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग

0: भोले हा संग संग डोले जे संग संग डोले हम पंछी एक डाल के
1: शोध आलेख और स्वर अमरकांत का प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन अब नमस्ते
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
1: इश्क से कह दो कि ले आए कहीं से सावन प्यास भरे।
3: आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सकें। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मेट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज सुबह प्रसारित किए गए प्रादेशिक समाचार की

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण

0: केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिंग समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर DGP कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज 1 दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में MSME उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजना और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अधिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
2: और ये मेरी गुड़िया थी ना।
3: और दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या?
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मंजिल से किशोर कुमार का गाया।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अमर प्रेम का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर के विविध भारती केंद्र से। लीजिए अब सुनिए चुपके चुपके फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम, हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ। यूं हमारे इस कार्यक्रम में, जैसा कि आपसे बातों के जरिए हम बता चुके हैं कि कुछ बातें कुछ गीत, यानी बातें भी होंगी और गीत भी होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि शायद पहले बात का सिरा पकड़ने के लिए यदि गीत सुन लिया जाए तो क्या बात है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रहे ना रहे हम महका करेंगे। ये सभी पर ये बात लागू होती है क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि कोई भी हमेशा को रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके जाने के बाद भी हमारे अपने जहन में, ख्यालों में, दिलो दिमाग में ताउम्र जिंदा रहते हैं, कुछ अपनी कला के ज़रिए और कुछ अपने कारनामों के जरिए, यानी जो वो काम कर जाते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी यह है श्रोताओं कि हम जब कभी भी जहाँ कहीं भी जाएं, तो यदि कुछ बड़े बड़े काम नहीं भी कर पाएं तो छोटे छोटे काम ही करें। मसलन आजकल हर बात का दिखावा या हर बात का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर किया जाता है, और इस सोशल मीडिया का हम अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम और आप सब इन दिनों देख रहे होंगे कि एक छोटी सी रील आ रही है जिसमें देश के जो जवान हैं, सेना के जवान, वो किसी मोहल्ले में जहां जनसाधारण कूड़ा कचरा बिखरा रहे हैं वो समेट रहे हैं। फिर जब कोई एक बच्चा उनसे पूछता है कि आप तो सैनिक हैं, आप तो बंदूक उठाते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आप तो देश सेवा करते हैं, तो सैनिक का जवाब होता है कि ये भी देश सेवा है। जी हाँ, हम जो भी काम करते हैं देश के हित में, अपने हित में करते हैं, वो देश सेवा है। हम अपने मोहल्ले में कचरा ना फैलाएं, अपने घर का कचरा बाहर खुले में सड़क पर ना डालें, क्योंकि ये वो मौसम है जब आप इस मौसम का चाहे तो आनंद ले लें या फिर तकलीफ़ में गुजार दें। क्योंकि बारिश के मौसम में जहाँ ढेर सारी सुंदरता प्रकृति अपने पूरे शबाब पर बिखेरती है, वहीं ढेर सारी बीमारियाँ भी पनपती हैं। क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ बीमारी आएगी ही, यदि पानी जमा है और उसमें गंदगी पनप रही है। तो अपने आसपास ध्यान रखें कि पानी ना जमा होने दें। इन दिनों जब बारिश हो रही है तो जल संरक्षण की बात करें, जल संरक्षण के उपाय सोचें, जिसमें लोगों को दूर दूर जब वो एक मटकी, एक गगरी, एक बाल्टी के लिए लाखों मील का सफ़र तय कर घर की महिलाएं या पुरुष पानी लाती हैं, वो इस दिक्कत से निजात पा सके। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल तो हमें हर वक्त रखना चाहिए, और यदि हम ख्याल रखेंगे तो निसंदेह भला हमारा ही होगा। तो जब जागे तब सवेरा की तर्ज पर बारिश अब मेहरबान है तो जल संरक्षण के उपाय करिए। बारिश जहाँ कहीं गड्ढों में, नदी नाला तालाबों में, आसपास जहाँ कहीं भी पानी जमा हो, तो जब नदी तालाब का पानी सड़कों पर आ जाए तब ऐसी जगह से सड़कें ना पार करें, रुक जाएं थोड़ा सा पानी उतरने का, क्योंकि जल्दी में कभी भी जीवन में पार नहीं पा सकते। जल्दी यदि ज़्यादा की तो जीवन से ही पार पा सकते हैं। तो कहीं भी यदि पुल पर, सड़क पर पानी यदि ऊपर है, उसके चढ़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि नदी नाले आए हैं या चढ़े हुए हैं, तो उस वक्त इंतज़ार करें, अपनी बहादुरी या जल्दबाजी ना दिखाएं कि नदी नाला पार करने के आप जोखिम उठाएं। और एक बात, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इन दिनों जब बारिश का पानी कहीं कहीं जमा है, कोशिश ये करें कि यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या किसी और आपको बीमारी है और पैर में कहीं कोई खुला घाव है, तो उस पानी से यदि आप गुज़र भी जाएं, अव्वल तो गुज़रे नहीं हो, गुज़रें तो जाकर अच्छे से पैरों को साफ़ करें, क्योंकि बारिश के पानी में जो ये गड्ढों में जमा होता है गंदा कीचड़ वाला, इसमें ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं जिनके वायरस उसमें होते हैं। तो गीले गीले पानी का आनंद उठाइए, पर सजग सचेत रहकर।

तो गीले गीले पानी की कहानी सुरीली हो सकती है, सुंदर हो सकती है, बशर्ते कि हम ख्याल रखें। इन दिनों ख़ास तौर से ये भी ख्याल रखना होगा कि हरियाली चारों तरफ बिखरी है, तो हम और आप सब घूमने जाते हैं, बारिश पर लंबी राइड, कभी बाइक पर, कभी कार पर, चार पहिए पर। तो जब इस तरह के राइड पर आप जाएं, तो ये ध्यान रखें कि सड़क पर कहीं कहीं पानी भी भरा होता है गड्ढों में, तो स्पीड पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। यूं भी गति में नियंत्रण तो होना ही चाहिए जीवन के हर पल पर, क्योंकि आप देखिए ना, हमारे सांसों की जो लय है, एक सांस लेना, एक सांस छोड़ना, ये भी बड़ा लयबद्ध तरीके से होता है। इसकी लय की गति जहाँ कहीं भी थोड़ी सी बिगड़ी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। यही बात जीवन में है कि जब आप कहीं दूर जा रहे हैं, आप बारिश का आनंद लेने जा रहे हैं, तो तेज़ सरपट ना भागें। ख़ासतौर से ये बात युवाओं को समझानी होगी, और वो हम अपने घर में ही बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। हालांकि आज के युवाओं को ये लगता है कि उन्हें सब आता है, सब पता है, लेकिन कुछ तो कम अपने मम्मी पापा से आता ही है, तभी वो आपके माता पिता हैं और आप उनकी संतान। तो बस अपना और अपने का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इस हरियाली के मौसम में जब कहीं पिकनिक पर जाएं, ख़ास तौर से झरनों में, नदी तालाबों के निकट जाएं, तो उनके बीच में जाने का दुस्साहस मत करिए, क्योंकि वो दुस्साहस ही कहलाएगा। कब कैसे उस झरने का या उस तालाब का या नदी का जलस्तर बढ़ जाए, आप नहीं जान सकते। हर बार, हर मौसम में इस तरह की घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, खबरें देखने सुनने को मिलती हैं, लेकिन हर बार फिर वही गलती हम दोहराते हैं। तो ये हमेशा ख्याल रखिए कि हर मौसम का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम सजग सचेत रहें, अपने लोगों की बात माने। बुज़ुर्ग अपने घर के जो उनके संतान हैं उनकी बात माने, अपना ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, और बच्चे तो अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की बात माने ही माने। मंदिर, मस्जिद सब कहीं जाइए, लेकिन यदि हमेशा खुश रहना है तो जीवन में हर पल सजग सचेत रहना ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसे आपने सुना आपके अपने रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बीते दिन यानी मंगलवार को की जा चुकी है। आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम मंगलवार के दिन 11:15 से 11:50 तक रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2666-445-2402093, जबलपुर का एसटीडी कोड है 0761। तो इसके लिए आप फ़ोन लगाएं मंगलवार के दिन 11:15 से 11:50 तक। इस कार्यक्रम का पहला भाग प्रसारित किया जाता है मंगलवार के ही दिन रात 9:30 से, और शेष भाग आज यानी बुधवार के दिन विविध भारती पर 11 से 12 तक, यानी 11 से लेकर 11:55 तक। और जो पहला भाग मंगलवार के दिन आप सुनते हैं, वो आकाशवाणी जबलपुर से यानी प्राइमरी चैनल से किया जाता है। तो बस इस वक्त ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

नमस्कार श्रोताओं, यह है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू। हमारे इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है 2666-445-240-2093, जबलपुर का एसटीडी कोड 0761। तो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सुनते हैं हमारे ये कॉलर कौन है।

0: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी जबलपुर।
1: स्वामी राजू को राजेश कहता का भगिनी से पूरा नमस्कार।
0: राजेश जी बरगी नगर में हैं?
1: जी है बिल्कुल बैगना में, और मौसम का आनंद ले रहे हैं जी। अरिंजन बारिश बारिश भी हो रही है यहाँ पे,
0: और
1: और
0: बरगी
1: काफी
0: डैम,
1: सुहाना मौसम है
0: हाँ
1: जी।
0: बरगी डैम का जल स्तर बढ़ गया?
1: हाँ बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया है। बीच में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब काफी पानी कम हो गया था, अब अच्छा
0: जी
1: बढ़ गया, आ रहा पानी आ रहा बढ़िया।
0: अच्छा।

0: गया हूँ
1: जी जी
0: और बस आगे संजोल मेरा कभी काफी पुराना नाता है मैडम।
1: अच्छा राजेश, क्या करना आपको अच्छा लगता है, आपके शौक क्या है?
0: वैसे ज़्यादा मेरे शौक मैम ज़्यादातर लिखा पढ़ लिखा लिखन क्या करता हूँ, मैं डायरी लिखता हूँ अपनी खुद पर्सनल डायरी लिखता हूँ और लिखना मुझे खूब अच्छा लगता है। चीज़ें जैसा मतलब किसी विषय पर लिखना है तो मैं लिखता हूँ घर बैठ के आराम से समय निकाल के।
1: किससे प्रभावित हैं आप, किसके लेखन से आप प्रभावित हैं?
0: ये तो नहीं, ये ना खुद का मतलब अपना मतलब वो है जैसे विचार बनते हैं मेरे मन में, मतलब जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सुख दुख आते हैं, कैसे पड़ाव आते हैं, इससे भी बैठ के सोचता हूँ लिखता रहता हूँ।
1: चलो अच्छी बात है। आज कौन सा गाना सुनना है?
0: ये फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु,
1: जीवन मृत्यु।
0: मोहम्मद रफी और जबरदस्त की आवाज़ में धर्मेंद्र राखी फिल्म आ गया है, जेल में सितारों का आंगन वाला गाना।

0: फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: जी मैडम नमस्ते, मैं संतोष यादव बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ रहते हैं आप?
1: हिमलगिया में मैडम, मैं कई बार अपनी बात भी हुई है।
0: हाँ बिल्कुल हुई, हम पहचान गए आपको।
1: जी
0: एक बार अपने श्रोताओं को बता दें क्या करते हैं आप।
1: जी मैडम मैं तो मम्मी के साथ फल की दुकान लगाता हूँ मैडम,
0: और साथ में कुछ फूल भी रखते हैं।
1: हाँ जी फूल भी, फल फूल की दुकान है।
0: हाँ तो आज कौन कौन से फल रखे हैं?
1: जी मैडम वही आम पपीता केला।
0: कौन कौन सा आम है?
1: आम ये है तोता परी और ये
0: दशहरी
1: और लंगड़ा आम।
0: और संतोष गाना आज कौन सा सुनना है?
1: मैडम गाना वो सुनना है हमको, लता जी और रफी साहब का गाना है, फिल्म का नाम तो याद नहीं है लेकिन वो गाना बदरा छाए, बदरा वाला गाना सा,
0: बदरा ये वाला है ना, बदरा छाए, बदरा छाए की हाय, ऐसा है।
1: हाँ बदरा छाए के झूले पड़ गए।
0: हाँ ठीक
1: आया सावन झूम के, ऐसा गाना है।
0: बिल्कुल, तो देखिए फिल्म का नाम तो आपने बता दिया है ना, तो सुनवाते हैं फिर आया सावन झूम के फिल्म का ये गाना। ठीक है
1: जी मैडम नमस्ते
0: नमस्ते।

0: फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, बहुत दिनों बाद फोन लगाया।
1: जी
0: कहाँ थे?
1: कहीं नहीं गया था और साथियों को मौका दे रहे थे।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। औरों के
1: जी
0: बारे में जो सोच ले आज के जहान में,
1: जी
0: बहुत ही कमाल का है वो आदमी।
1: जी
0: करते क्या है योगेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: तो अभी क्या

0: लगा खेत में? अभी तो
1: अभी तो धान
0: लगा रहे
1: डाले
0: होंगे।
1: थे, बहुत
0: हाँ
1: बहुत बारिश हुआ है जी।
0: तो धान के लिए तो पानी जरूरी है।
1: हाँ जी, लेकिन ज्यादा हो गया है। अब देखिए,
0: हाँ
1: प्रकृति का अपना
0: सही बात
1: काम
0: है।
1: है
0: और योगेश
1: जी।
0: जी घर में कौन कौन है?
1: घर में सभी हैं, माता पिता पत्नी बच्चे,
0: जी, बच्चे क्या करते हैं,
1: पढ़ाई करते हैं।
0: क्या पढ़ाई करते हैं?
1: कक्षा 6वीं में है और 1 कक्षा 2री में। हाँ
0: अच्छा, छोटे हैं अभी।
1: जी,
0: और आप अपने खेत की मेड़ों पर भी पौधे लगाते होंगे?
1: हाँ जी, पिछले साल ही लगाए थे, बड़ा हो गया है जी।
0: जी, कौन सा पौधा लगाया था जो पेड़ बन गया?
1: वो कदम का पेड़ है। हाँ
0: ओहो हो, कदम का पेड़।
1: जी, कदम
0: और
1: से
0: गाना गाना आज कौन सा सुनवाई योगेश जी?
1: फिल्म नमक हलाल से, आज रपट जाए तो हमें ना उठेगा।
0: अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल,
1: हाँ जी, हाँ
0: सुनवाएं फिर ये गीत।
1: जी, हाँ जी, धन्यवाद।
0: फोन के लिए धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो,
0: विविध भारती जबलपुर। जी बोलें।
1: मैं मैम रामदास पटेल बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी लगाया था, कट गया था कॉल आपके यहाँ से। जी
0: अरे इस बार नहीं कटेगा, ठीक है।
1: मैं
0: रामदास पटेल जी रहते कहाँ हैं?
1: पिंडरई ढीमर खेड़ा में, मैम
0: पिंडरई ढीमर खेड़ा। और करते क्या हैं?
1: मैम किसान ही।
0: क्या बात है। तो आपके खेत में कोई कोई फल भी लगे हैं या बस सब फसल लगी है?
1: फसल मैम अब धान की बोनी प्रारंभ है।
0: हाँ, धान की बोनी कर रहे हैं। फिर फसल कितने महीनों में तैयार हो जाती है?
1: मैम इसे नवंबर में तैयार होकर कट जाएगी।
0: तो फिर क्या थ्रेसर वगैरह भी है सब आपके पास?
1: नहीं मैम नहीं। जी
0: किराए से लेते होंगे। रामदास जी, हमारे यहाँ के कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं
1: तभी मैम
0: और आपको खुद को क्या करना अच्छा लगता है?
1: मेरे को मैम ये रेडियो सुनना पसंद है सबसे ज्यादा।
0: क्या बात है। कौन सा गाना सुनवाए फिर आज?
1: मैम आज मेरे को का सुना दीजिए, बरसात पिछले का है।
0: बरसात फिल्म का।
1: जी दोस्त
0: कोई और दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे?
1: लोगों के अब नहीं मैम
0: दोस्त नहीं है?
1: है मैम अब है तो बात ही।
0: चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। ठीक है,
1: ओके मैम थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन कर गई सुने।
1: जी, विविध भारती जबलपुर।
0: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार
0: जी मैं संतोष कुमार
1: संतोष जी, कहाँ रहते हैं?
0: जी। मैं ग्राम सुक्कम गरघटिया।
1: ग्राम सुक्कम घरघटिया।
0: हाँ, जो दोनों नाम एक ही नाम से आते हैं
1: अच्छा, क्या कुछ काम वगैरह कर रहे हैं? क्या
0: जी।
1: क्या काम कर रहे हैं?
0: अभी ये ढूंढते वगैरह लग रहा है, मक्के
1: अच्छा,
0: काकड़ी है, लौकी है जी।
1: ककड़ी लौकी सब लगाते हैं,
0: नहीं
1: फिर बेचते भी होंगे।
0: नहीं घर में बच्चे लोग खाते हैं।
1: अच्छा, केवल अपने घर के लिए, जरूरत के लिए।
0: हाँ, घर के लिए, वो जैसे व्यवहार में रिश्तेदारों में दे देते हैं।
1: अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर आपकी आमदनी का जरिया क्या है?
0: आमदनी का दुकान है मैडम जी, किराने की।
1: हाँ, तो किराने की दुकान में किराना कहाँ से लाते हैं?
0: किराना नगद वाले धूमा कहानी दोनों जगह से। हाँ,
1: अच्छा, और हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
0: आपका कार्यक्रम तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, वही 1990 से।
1: क्या बात है, तब तो हम नौकरी में भी नहीं आए थे 90 में। आज कौन सा गाना सुनवाएं?
0: छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाएंगे भीगी रात में। जी,
1: छतरी ना खोल बरसात में।
0: रिमझिम पानी भी बरस रहा है।
1: हाँ, इसलिए आपने सोचा मौसम के अनुकूल सुनवा दें गीत। फिर
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: जी सावनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं।
1: गोटे गांव से बोल रहा हूँ, योगेश चौरसिया।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है।
0: और दुकान व्यवसाय कैसा चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा है हमारे हिसाब से तो।
0: आपके हिसाब से बढ़िया, बस आपका ही हिसाब सही होना चाहिए है ना भाई, आपकी दुकान आपका व्यवसाय आपके हिसाब से चले तो बस इससे अच्छी बात
1: हाँ
0: क्या
1: ये तो है।
0: है? और बताइए आपको खुद क्या करना अच्छा लगता है, क्या शौक है?
1: शौक तो अब ऐसा कुछ नहीं है, जो थे वो कर ली है। अब कहीं घूमने जाने के लिए सोच रहे हैं कि इस बार अब थोड़ी सी बरसात कम हो, सावन के बाद जाएंगे कहीं घूमने।
0: वाह, तो कहीं दूर जाएंगे या अपने ही प्रदेश में?
1: प्रदेश में होगा या फिर कहीं और, का विचार तो है, अब देखो जहाँ जैसा हो जाए।
0: अच्छी बात है। और गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: अच्छा पेंटर बाबू का सुनवा दीजिए, झूम के वर्षा पानी दे, पानी एक कहानी दे।
0: क्या बात, देखो इतना अच्छा गीत आपने पसंद किया, हम इतना अच्छा थोड़ी खोज पाते हैं।
1: अरे नहीं ऐसा नहीं,
0: झूम
1: आपकी
0: के
1: पसंद तो
0: बरसा
1: मुझसे ज्यादा
0: पानी
1: अच्छी है
0: रे, सुनवाते हैं ठीक है?
1: जी
0: झूम के बरसा पानी
1: धन्यवाद।
0: रे। धन्यवाद।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
0: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडला वैली से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे। दीदी चाय पी लो।
1: लक्ष्मण जी कैसे हैं आप?
0: अच्छे दीदी, आपसे बात हो गई तो बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और हम भी बहुत अच्छे हो गए। और बंडा में चाय की दुकान चल रही है? बढ़िया।
0: हाँ बढ़िया चल रही है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग ठीक रहेंगे, दुकान भी चलती रहेगी।
1: बिल्कुल सही। आप खुद एक दिन में कितनी चाय पी लेते हैं अपनी दुकान की?
0: थोड़ी थोड़ी करके हमें वो खुद नहीं पता रहता है, थोड़ी चेक करना पड़ता
1: जी
0: है।
1: जी सही बात है, ये अच्छी बात है। हाँ, तो आज लक्ष्मण जी कौन सा गाना सुनना है?
0: आज मोहरा पिक्चर का सुनो, चिप चिप बरसा पानी।
1: मोहरा फिल्म का भी आपके एक और मित्र हैं,
0: हाँ
1: उन्होंने भी सुनना चाहा था, तो आप दोनों को मिलकर आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं, मोहरा फिल्म
0: ठीक
1: का। ठीक है,
0: है। हाँ कब आ रहे हैं दीदी? आओ एक आध बार।
1: आते हैं जरूर, कभी जरूर आएंगे। ठीक है
0: हाँ
1: जी,
0: जी ठीक
1: फोन के लिए धन्यवाद।
0: है दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
0: हेलो मैम, नमस्कार
1: नमस्कार, नाम बताएं।
0: जी। मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटड़ा जिला जालन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
1: अमित तिवारी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है मैम, और रिमझिम रिमझिम अब तो बारिश जो है कि बारिश का मौसम भी शुरुआत हो चुकी है, तो रिमझिम रिमझिम बारिश भी होने लगी है तभी
1: जी,
0: इस, और थोड़ी बहुत ठंडक भी आ चुकी है जी मान के चलिए
1: और करते क्या हैं आप अमित जी?
0: जी। मैं पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हूँ, पूजा
1: अच्छा।
0: पाठ करता हूँ मैं
1: तो आपने अध्ययन किया है पूजा पाठ की विधि का?
0: जी। और हमारे बड़े भैया हैं जो भागवत का वाचन करते हैं, तो उन्हीं के साथ में उनके सहायक कर्ता के रूप में मैं उनका किरदार निभाता हूँ जी।
1: बहुत अच्छी बात है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है यानी। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ
0: और ये मान के चलिए मैम कि
1: हाँ
0: इसमें क्या होता है कि इसमें अपना पैसों का भी बचत हो जाता है, और
1: सही है।
0: इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सभी
1: हाँ
0: को जुड़ रहे हैं कि
1: हाँ
0: इसमें आइए, इसमें बहुत मान सम्मान मिलता है, और इसमें और पैसे भी और आमदनी भी, कहने का मतलब आमदनी का एक जरिया भी, क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैम।

0: बिल्कुल सही। तो बताएं फिर आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: मोहरा फिल्म का गीत सुनने के लिए हमने फोन लगाया
0: टिप
1: है।
0: टिप
1: टिप
0: बरसा
1: टिप
0: पानी
1: बरसा पानी।
0: सुनवा दें, टिप टिप बरसा पानी।
1: जी, हमारे कुछ दोस्त मित्र हैं, मैं उनको डेडिकेट करते हैं गीत।
0: बिल्कुल, नाम बताएं।
1: जी, आप कौन बोल रही हैं मैम? जी,
0: सावनी राजू।
1: वाह, प्रणाम प्रणाम। और जी मानो, चलिए आज हमारे भाग उदय हो गए हैं, जो आपका नाम बहुत समय से सुन करके और आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो जी मान के
0: जी
1: चलिए
0: जी
1: कि और भी अति आनंद, कहते हैं अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा।
0: क्या बात है अमित जी। जी
1: जी,
0: बताएं
1: तो हमारे
0: दोस्तों के
1: श्रोता
0: नाम।
1: हैं बुंदेलखंड के जाने माने श्रोता जयपाल यादव हैं, और हमारे चंदेश गौहर हैं सागर से, लक्ष्मण रेखवार हैं बंदा बेली से, मांगीलाल चंदेल भी हैं, और हमारे हरिविलास सिंह तोमर हैं, नरेश कुमार प्रजापति जी भी हैं, गजराज लोधी भी हैं, और हमारे रामबाबू मालवीय हैं, और काफी श्रोता हैं जो इस वक्त कार्यक्रम को सुनते हैं, गुनते हैं और फोन भी लगाते हैं आपके कार्यक्रम में।
0: फिर आप सभी श्रोता मिलकर सुनिए अपनी पसंद का गाना, ठीक है?
1: ओके मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
0: गोहलपुर सुभाष नगर से भग्गू कोष्टा
1: भग्गू कोष्टा।
0: एक पेयर बोल रहा हूँ मैडम।
1: हाँ बोलिए।
0: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी जहां पर पानी कम था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे। मैडम ये वाला गाना सुनना है,
1: सुनवा दें?
0: दिलवाले फिल्म का।
1: हाँ ठीक है, सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत आपको। और कुछ
0: थैंक यू।
1: कहना है?
0: और कुछ नहीं मैडम, बस इतने कहना कि आप मेरी शायद छोटी बहन बराबर होंगी, इसलिए
1: हाँ शायद, क्या कंफर्म है? हाँ
0: इसलिए जो
1: इसलिए
0: मैडम बोल जाए उसके लिए सॉरी। क्या
1: क्या बोल दिए?
0: करूं, खुशी के मारे कुछ भी निकल जाता है मुंह से।
1: कोई बात नहीं, देखिए नियत अच्छी होनी चाहिए, खुशी से नियत पता लग जाती है ना? तो आपकी
0: ठीक
1: पसंद
0: है
1: का
0: ठीक
1: कोष्टा जी
0: है
1: गीत
0: दीदी जी,
1: सुनवाते हैं, सुनिए दिलवाले फिल्म का गाना। ठीक है,
0: ठीक है
1: फोन
0: ठीक
1: के
0: है
1: लिए शुक्रिया।
0: जी।

0: फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोनामर्ग।
0: लतीफ जी, क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा मैडम।
0: और कश्मीर का क्या हाल चाल है?
1: बस कश्मीर में अभी मौसम सुहाना, मौसम में सुहाना मौसम बना है अभी यहाँ पे। कल यहाँ पे धूप था, आज यहाँ सुहाना मौसम है।
0: आपके सोनमर्ग में सुहाना मौसम है? किश्तवाड़ वगैरह में तो बारिश हुई है ना बहुत?
1: हाँ, वहाँ पे बाढ़ वगैरह भी आ चुका है। हाँ,
0: तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं अपने सोनमर्ग में?
1: बस मैं तो अभी कार्यक्रम सुनता हूँ अभी यहाँ कश्मीर में, FM 2 में चलता है छोटी
0: अच्छा,
1: छोटी बातें।
0: अरे वाह।
1: हाँ जी,
0: और आज गाना कौन सा सुनवाना है लतीफ जी आपको?
1: आज मुझे सुनाइए मुकेश की आवाज में कोई भी गाना।
0: मुकेश जी का कोई भी गीत?
1: हाँ, कोई भी।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम विविध भारती जबलपुर।
1: जी नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार, नाम बताएं, करते
1: काली चाल जबलपुर से क्या राजचंद धुरिया बोल रहा हूँ।
0: क्या हैं
1: किराना व्यवसाय
0: और हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी।
0: सबसे अच्छा कौन सा लगता है?
1: ये फोन इन प्रोग्राम जो आपका आता है ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
0: तो आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आप हीर राजा का सुनवा दीजिए, मिलो ना तुम तो हम घबराए।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, जिसे आपने सुना आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। तकनीकी सहयोगी थे नित्यानंद त्रिपाठी और रईस पटेल। इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम लाल टहलानी। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बता दें, दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, सुरीला संसार सजेगा दोपहर 1:00। दोपहर 2:30 पर सदाबहार नगमे और दोपहर 3:00 सखी सहेलियों से मुलाकात कीजिएगा। शाम 7:00 फौजी भाई सुनेंगे अपनी पसंद के कार्यक्रम जयमाला में अपनी पसंद के गाने। ये सभी कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 12:00 हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: दिन के ठीक 12:00 वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
3: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम

0: इसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा, अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
5: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें गुलशन बावरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील,

पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियां हमारे भीतर ही मौजूद हैं और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी तो लिख देना।

डाकिया डाक लाया, और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया उसके साथ पलकों की छांव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छांव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीजें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया, जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है। बहुत सारी बातें इसमें हुई थी, लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गांव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशी मिला, उसे संभाल कर रखे हैं। इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत

प्यार से उत्तर देखें। और हमारी श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिलौटने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं। कभी सफेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुनो की महफिल सजाते गायक, गायिका स्वाद बिखेरता हुआ बरची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए, और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बाबरची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था, जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबरची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बाबरची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बाबरची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है, ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है, और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं। ये भी तो एक अच्छी बात है ना, हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी कलकत्ता में, उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था, हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं प्राण साहब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टारजन होना चाहते थे, बढ़िया बात है, वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है, हाँ ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, अब सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं, और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है, और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए, और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, ज़रूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया, और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहां पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया, और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4

झांझिया कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हो, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार मैं आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मजेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों, इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे

फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूजा राम, तीजा राम का आयस जौहर ने, अभिनेता आयस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा बेटों की तिहरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में, आंटी नंबर 1 के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमीन पर की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली LLB में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना परसी ककर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सबसे मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीजें आपको बतानी है। वो किरदार गायक, अभिनेता, कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हैं गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, जरूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा कोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी

है उनका, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती है, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन है।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है। और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से, जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

छे दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में नजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज़ में परदेस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेस फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है, अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी रही और 10,600 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ।

0: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्णशीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCEOE भोपाल के 2 कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 ICF कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा

0: सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार।

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, SH बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
1: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
0: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
1: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए कहाँ जाए। और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश

0: बारिश आने वाली है,
1: हाँ
0: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन
0: हाँ,
1: ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं,
1: बहुत
0: वरना
1: सही बात कही।
0: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
0: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना?
1: साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
0: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती हैं, ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
0: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से, जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है। चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना बड़ा अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। ये ही गूंजती, यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहे, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है, है ना?
1: ये जो, और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई हैं, है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
0: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे

0: सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है
1: और
0: ना।
1: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो भी ख़राब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदाई बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को, उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि

0: शिकायत कम, शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए भाई। ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्म और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: संगीत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों

0: ने वहां के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया, जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुला कर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था, इसमें बहुत चमक भी होती है, और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं, जिन्हें खट कहा जाता है, आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई, और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा, जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया।
0: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है, इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है, तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं, ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना, उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं, लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है, तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं, तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है, ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं, जिसे खट अभी आपने बताया, खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना, वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती है देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होते हैं ना बहुत
1: बारीक काम होता है, और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है, और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है, और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है, वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो चंचल बात चल रही थी
4: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
3: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
4: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
3: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
4: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
4: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
3: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
4: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
3: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
4: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
3: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
4: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
3: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल
4: जी,
3: है ना?
4: सही कहा आपने।
3: और करनी में फर्क हो जाता है।
4: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्म मंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
4: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह ये हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है, और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां, जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए यह सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी,
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ।

0: रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहाँ जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है, उनकी उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिन उबाने, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबाने, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन उबाने, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबाने नहीं है, नयन और उबाने है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है, उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबाने। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
0: जी।
1: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।
0: आइए सुनते हैं।

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं। प्रिया, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो। बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी,
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षमा चकित हृदय प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें। तो पहले आता है पक्व बिंबाधरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
2: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया, कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मंत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मंत
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
2: ये
1: हम समझ सकते हैं। जी, तो एक गीत हो जाए पहले।
2: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
1: कभी भी। क्या बात है, फिल्म पगला कही का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
2: जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।
0: तुम

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी, उनकी उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
0: जी जी जी।
1: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
0: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
1: जी,
0: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
1: जी, 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं। साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
0: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
1: जी, जी।
0: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुना

0: प्रोफेसर रामदर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी की प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान हो करके अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
0: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
1: जी,
0: हैं
1: जी, हाँ, जी,
0: उसके बाद आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
1: जी। मंदाकिनी जी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
0: जी।
1: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
0: मेरे
1: गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद
0: है। बहुत सुंदर
1: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
0: आई सुन जी।

0: रायडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं
0: जी।
1: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने

0: प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं। और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
0: जी।
1: जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी, बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
0: जी,
1: मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
0: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: जी मंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ
0: जी।
1: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
0: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
1: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
0: क्या बात है,
1: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रूठना एक शब्द नहीं है, रूठना एक सजा है। जब जिंदगी रूठ जाती है तो सजा बन जाती है जिंदगी। रूठी हुई जिंदगी को मनाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी हरी भरी होती है, फूलों सरीखी मुस्कुराती है जिंदगी, लेकिन एक आंधी आती है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। जिंदगी रूठ जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूठ जाती है।

दुनिया की भीड़ में कभी कभी सारे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ऐसे में सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

रूठी हुई जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: कभी कभी।
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: तराने नए पुराने।
1: सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। और पहला गीत ये रहा अलका याग्निक हंसराज हंस की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं नुसरत फतेह अली खान का संगीत, कच्चे धागे फिल्म का नाम।

0: ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और हंसराज हंस की आवाजों में। संगीत था नुसरत फतेह अली खान का। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मर्यादा का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: तराने नए पुराने।
0: श्रोताओं, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म ताल का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और एआर रहमान ने धुन बनाई है। अनुराधा श्रीराम, एआर रहमान, सुजाता और सोनू निगम की आवाजें हैं।

0: तीसरी मंजिल, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरानी नई पुरानी। इस कार्यक्रम के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश।
2: तराने नए पुराने।
3: समाचारों के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

सूरज फिल्म से ये गीत है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हर्षित जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर। तराने नए पुराने।
1: आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खामोशी का ये गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। मजदूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जतिन ललित का ही संगीत।

0: सितारा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर भूपिंदर की आवाजों में, गुलजार के बोल थे और आरजी बर्मन ने इसकी धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।
1: तराने नए पुराने
0: फिल्म का नाम है चलते चलते, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, तर्ज जतिन ललित की।

0: अर्पण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है।
1: तराने नए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज की शाम में शेष बचे कार्यक्रमों की रूपरेखा और साथ ही कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर संध्या रंजन आप सुनेंगे। 6:45 पर संगीत सरिता श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इसका भाग 8 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग अनुराग। रात्रि 8 बजे हवा महल, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका नेहर छूटो जाए। लेखन अरविंद नीमा का है, निर्देशक जटाशंकर शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक रात्रि 8:15 पर, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। रात 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का है, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात रात्रि 10:30 पर और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। अब आपको कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता देते हैं। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार, 6:30 पर झरोखा और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का भाग 244। कल सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इसका भाग 9 प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह। कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत आप सुनेंगी सुबह 7 बजे। 7:30 पर हम है राही प्यार के और 8:15 पर त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर आरती श्रीवास्तव का है ये कार्यक्रम। त्रिवेणी आप पुनः दिन में 2 बजे भी सुनेंगे। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर कल आज की फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में सुनिएगा वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2। कार्यक्रम रंग तरंग सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 बजे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे 2:30 पर सखी सहेली कार्यक्रम 3 बजे, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गुल्लक बचपन का मनी बैंक पर बातचीत, कहानी पद्मश्री की, जिसमें आप सुनेंगे मजम्मा योगथी की बातचीत, मुझे कुछ कहना है बच्चे और जिद, इस विषय पर बातचीत होगी, उपयोगी टिप्स सड़क यातायात और बारिश, संवादक सोनाली पाठक और दीपा माहेश्वरी के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। शाम 7 बजे कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आर्टिस्ट वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। कार्यक्रम
हवा महल रात्रि 8 बजे, जिसके अंतर्गत हास्य नाटिका सुनिएगा कचरे का मालिक, लेखन विनायक शंकर विनय का, निर्देशक रणजीत अहलुवालिया, चित्रलोक 8:15 पर आपके लिए रात 9 बजे। 9:30 पर कल रात आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। छाया गीत रात 10 बजे और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था हमारी आज की सभा और कल की सभा के कार्यक्रमों का झरोखा। लीजिए, प्रस्तुत है संध्या रंजन।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभय जोधपुरकर और साथियों के स्वरों में। मनोज यादव ने इस गीत को लिखा था, अक्षय पुरंदरे का संगीत था। अगला गीत सुनिए मान्या अरोड़ा की आवाज में। शिवम रूपम ने इस गीत को लिखा है और बावा गुलजार का संगीत।

अगला गीत संध्या रंजन में आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में, शब्बीर अहमद की बोल है, अनिस अली सबरी का संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, और अब हम आठवीं कड़ी पर पहुंच गए हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि आपका एक बहुत मशहूर गाना है पंचमदा का 1942 लव स्टोरी, और आपने विशाल भारद्वाज के साथ माचिस फिल्म में है बांसुरी की तान, और जुदाई में है, तो ये इतनी सारी फिल्मों में आपने बांसुरी की तान छेड़ी है। कुछ आप इन गानों से जुड़ी, इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई अपनी नायाब यादें ताज़ा करें, साझा करें।
2: जी, जुदाई फिल्म में दरअसल नदीम श्रवण का म्यूजिक है
1: जी।
2: और

0: तो
1: जी
0: मुखड़ा अपने आप में इतना
1: क्या
0: मुश्किल,
1: बात है।
0: और हुआ क्यों कि दो तीन बांसुरी वादक गए वहां और वो बजा नहीं पाए, पीस इतना मुश्किल था।
1: जी
0: तो कैलाश मेहता करके एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो मिनी कॉर्ग में बीन की आवाज निकालते थे, उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। और उसमें कुछ टाफू ब्रदर्स बोलते हैं
1: जी,
0: एक टाफू खान तबला प्लेयर है और एक ताफू ब्रदर जो दूसरा भाई एकोडेन प्लेयर है, तो जो दूसरा भाई है वो आया हुआ था। तो उनके सामने एक ऐसा एक होता है कि हिंदुस्तान की लाज कौन रखे, तो बात तब देश पे आ गई। तो कैलाश ने कहा वो रोनू मजुमदार को बुलाओ, वो ठीक कर देगा सबको।
1: क्या बात है।
0: वो कैलाश ने पता नहीं, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, नीचे से फोन किया, तू करके ही बात करता था, तू कहाँ है? मैं बोला कैलाश भाई तो घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आजा जल्दी सुदीप स्टूडियो में, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, और तू बता दे इन लोगों को कि तू क्या चीज है। मैंने बोला अरे यार ऐसी क्या बात, वो हम तो गुलाम अली के साथ इतना काम किया। बोले बस इसीलिए तो बुला रहा हूँ, तूने गुलाम अली जी से वाह वाह ले लिया है तो और क्या चाहिए, गुलाम अली से तो बड़ा नहीं है ना ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मैं स्टूडियो पहुंचा, तो पहुंच के उन्होंने तो 5 मिनट तक तो मुझे अपना हारमोनियम ही सुनाते रहे। मैंने बोला कि इनको सुनना है मुझे कि नहीं, पहले पूछ तो लेना चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती क्यों सुना रहे मुझे। फिर मैंने टोक दिया बीच में, मैंने कहा कि मुझे ये सब जो आप बजा रहे हैं ये सब बजाना है क्या, तो ये सब मैं लिखूं? बोले नहीं नहीं आपका पीस तो अलग है। तो मैंने कहा फिर तो वही बताइए ना जो मुझे बजाना है। तो जैसे ही बजा तो मैंने लिखने लगा, तो बोले लिखिए मत। मैंने कहा मैं लिखूंगा जरूर ताकि आप बदल ना सके।
1: क्या बात है।
0: हाँ, लिख लूंगा तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था।
1: जी जी जी।
0: जब उन्होंने पूरा लिखवा दिया, 2 टेक में मैंने बजा दिया।
1: क्या बात है।
0: तब से वो फोन करते थे मुझे, और गुलाम अली भाई तो फोन करते ही थे, उन्होंने भी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी। वो कहते सन ओ रोनू भाई, ओ दूजा जड़ा आंदा है ओनू पता नहीं पंजाब घराने दा, तुसी आओगे तो चंगा रहेगा।
1: क्या बात है।
0: बहुत ही प्यार। तो जुदाई का ये किस्सा, और माचिस का किस्सा मैं खास करके आपको ये बताऊं कि पंचमदा जाने के बाद 3-4 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिल्म लाइन के प्रति मेरा मन उचाट जो बोलते ना एक शब्द है, एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था कि मैं फिल्मों में क्यों बजाऊं, मैं अपने सोलो प्रोग्राम करूं वही अच्छा है। फिर फोन आ गया गुलजार साहब का, और गुलजार साहब की आदत है कि कोई बंगाली है तो अपने से छोटा भी है तो उसको दादा ही कहते हैं।
1: अच्छा।
0: आज भी गुलजार साहब मुझे दादा कहते हैं।
1: क्या बात है।
0: वो उनकी बैरुट
1: भारी सी आवाज। हाँ, बिल्कुल।
0: कहाँ है हुजूर दादा, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं इंडस्ट्री में। भाई जी प्रणाम। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक नए लड़के को चांस दे रहा हूँ, उसका नाम है विशाल भारद्वाज, आप इस फिल्म में बजाइए। मैं जब गया वेस्टर्न आउटडोर, पहला पानी पानी रे, मैं बिना तबले के ये बजा रहा हूँ, इस दर्द को देखिए।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब लगता है कि गाना भी सुनवाना पड़ेगा। हाँ जी,
1: गाना लोगों को सुनाए उसके पहले मैं एक बात
0: जी,
1: विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बहुत माचिस से पहले बजाया, मगर कभी स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया था, और सीडी में उन्होंने क्रेडिट पे मेरा नाम दिया। माचिस का पूरा बैकग्राउंड

0: ला ला ला ला ला, इस सब गाना मैंने बजाया। और बैकग्राउंड में एक यादगार किस्सा है जिसमें तब्बू जो है वो साइनाइड की गोली चंद्रचूड़ के मुंह में दे रही
1: जी
0: है,
1: दे
0: वहां
1: रही
0: का मेरा बजाया हुआ राग मारवा, उसमें वो किस्सा। मैंने कहा गुलजार साहब इस सीन को मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने कहा दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगी। उस सीन को याद करिए।

0: वाह, राग मारवा में ये बांसुरी की तान थी फिल्म माचिस, और अद्भुत, आपने तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी। तो अब इसके बाद हम क्या गाना सुनवाएं, या फिर
1: मैं चाहता हूं कि पानी पानी रे इस गाने को लोगों को सुनाइए, क्योंकि उसमें तीन फ्लूट मैंने डबिंग किए थे जो एक साथ अभी बजाना संभव नहीं, तो एक्चुअल जो मैंने बजाया उसको लोग सुन लेंगे तो, और दीदी की वो मखमली और वो शहद से टपकती हुई
0: आवाज,
1: आवाज जो लगता है कि माँ सरस्वती गा रही है।

0: रुनुदा, एक गाना है गीत फिल्म का, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और जब हमारी बात हो रही थी फोन पर तो आपने इसका जिक्र भी किया था। बड़ी सुंदर बांसुरी है उसमें, और बांसुरी वादक का रोल किया है राजेंद्र कुमार ने ना।
1: जी जी जी।
0: तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को एक टुकड़ा सुनाएं?
1: उस पीस को हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत छोटे थे जब हम लोग,
0: जी जी,
1: तो हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी ने उसको बजाया। उसका जो पीस है वो पंचम को सा करके बसता है।
0: जी जी।
1: तो उसका टेक्निकली भी फ्लूट प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे वो बजा।

0: वाह, अद्भुत तान छेड़ी आपने।
1: मुझे भी डर लग रहा था कि वो पीस मुझे याद है कि नहीं। मैं इस पीस को कितने सालों बाद बजा रहा हूँ, मगर शुक्र है कि मैं बजा सका।
0: बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, ये जो घड़ी की सुई है ना, ये हम सबको बहुत बाध्य कर देती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: कार्यक्रम जय माला लेकर हम हाजिर हो गए हैं। हमारे सभी फौजी साथियों का ये कार्यक्रम है। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। जय हिंद साथियों। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म केसरी से। बी प्राक की आवाज़ है, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा है, आरको का संगीत है।

0: कार्यक्रम जयमाला की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया एक देशभक्ति गीत बी प्राक की आवाज में। अब सुनिए भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर।

0: लड़े भारतीय सेना।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आपको सुनवाते हैं फिल्म उत्सव का ये गीत। इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर ने, वसंत देव के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सनी से हम सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन एवं हवन सामग्री।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आपको अगला गीत सुनवाते हैं साहिब फिल्म से, अनजान के बोल हैं, संगीतकार बप्पी लहरी हैं और किशोर कुमार साथियों के स्वरों में ये गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अंतराल के बाद आप सभी साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम जयमाला में बहुत स्वागत है। सोनी महिवाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं खय्याम का संगीत।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने प्रम्बानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब प्रम्बानंद मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के

0: अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
3: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाग परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। CEO आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा ID बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा OPD टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जन्मजात बच्चों के जन्मजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग अनुराग। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग तिलक कामोद पर आधारित। फिल्म अनुराधा से इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीतकार रवि शंकर।

अगला गीत अलबेला फिल्म से। इस गीत को भी गाया है लता मंगेशकर ने। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीतकार सी रामचंद्र। राग पीलू पर आधारित ये गीत।

संजोग फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण हैं और संगीतकार मदन मोहन। राग काफी पर आधारित ये गीत है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले संजोग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, जो कि राग काफी पर आधारित था। और इसी गीत के साथ इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग अब यहीं संपन्न होता है।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं अरविंद नीमा की लिखी नाटिका नैहर छूटो जाए। निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा।

0: चंद बेटा तुम
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते। बड़े दिनों में आए, मैं तो समझती थी कि तुम हमें भूल ही गए।
1: अरे नहीं, भूलूंगा क्यों, बस मरीजों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। आज मिली तो सीधा आपके दर्शनों को चला आया।
0: आओ बैठो बैठो। कैसे हो?
1: ठीक हूं। अब आपकी तबीयत कैसी है?
0: अब तो एकदम ठीक है। लगता ही नहीं है कि कभी इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था।
1: और उस समय कितना डर गई थी आप?
0: अब बेटा, पहले कभी तो ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, और ऊपर से ये शहर वाले डॉक्टर बहुत डरा दिया था। बात तो सच ये है कि वो सब तेरे ही हाथ का हुनर था, जो 5 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई।
1: हुनर मेरा कैसा, ये तो बड़े बूढ़ों का आशीष है।
0: हाँ, वो तो है ही, पर अब बड़े बूढ़ों के लिए एक बहू भी ले आओ।
1: हाँ अब यही चल रहा है।
0: कोई लड़की वड़की देखी है क्या?
1: हाँ लड़की तो पसंद आ गई, देखें आगे क्या होता है।
0: लड़की पसंद कर ली तो अब क्या होने को है?
1: अरे हाँ मम्मी, वसुधा नहीं दिखाई दे रही।
0: लाइब्रेरी गई है।
1: अच्छा उसकी शादी कब कर रही हो?
0: वसुधा के पापा इसी सिलसिले में उदयपुर गए हुए हैं।
1: हाँ
0: अगर रिश्ता तय हो गया तो सबसे पहले तुम्हें ही मिठाई खिलाऊंगी दर्शन बेटा।
1: अच्छा फिर तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी।
0: तैयारी? कैसी
1: हाँ
0: तैयारी?
1: अब मिठाई पचाने की।
0: अच्छा अच्छा अब बोलो, चाय पियोगे या कॉफी बनाऊं?
1: नहीं मम्मी इसकी तकलीफ मत करो।
0: अरे तकलीफ काहे की, तुम ही तो कहते हो कि अगर सदा निरोगी रहना है तो बिस्तर पकड़ कर मत बैठे रहना, घर के कामकाज करते रहना। और अब आज खुद ही
1: अच्छा, तो चाय ठीक रहेगी।
0: अभी लाई। आ गई वसुधा?
2: हाँ मम्मी।
0: आज कृष्णन आया था।
2: कब?
0: दोपहर में।
2: कैसे आए थे?
0: यूं ही मिलने चला आया था। बड़ा ही संस्कारी लड़का है।
2: अच्छा मम्मी, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी?
0: याद क्यों नहीं बेटा, उस दिन तो एक तरह से मेरा पुनर्जन्म ही हुआ था।
2: उस दिन तुम्हें गेट तक छोड़ने के लिए कृष्णन भी तो आए थे।
0: हाँ हाँ आया था ना।
2: तब तुमने उससे जो कहा था वो याद है तुम्हें?
0: अच्छी तरह याद है। मैंने कहा था वो लड़की बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है?
2: क्योंकि क्योंकि मम्मी उसकी पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हारी ही बेटी को।
0: वसुधा
2: क्या हुआ मम्मी, खुशी की बात पर भी गुस्सा क्यों होती हो?
0: तेरा दिमाग तो ठीक है ना?
2: मम्मी जब मैं कॉलेज जाने लगी थी तब तुमने कहा कि तुम मेरी मम्मी के साथ साथ मेरी सहेली भी हो, कहा था ना? तो मैं आज अपनी उसी सहेली से अपने मन की बातें कर रही हूँ। मेरी बात सहेली की तरह सुनो ना मम्मी, प्लीज मम्मी गुस्सा मत करो प्लीज मम्मी।
0: वसुधा ठीक ठीक बात कर।
2: मम्मी कृष्णन मुझे हर तरह से अच्छे लगते हैं। आज वो कॉलेज आए थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ।
0: और तुमने अपना विवाह तय कर लिया?
2: नहीं मम्मी, तय तो आप और पापा ही करेंगे। मैंने तो तुम्हें अपने और कृष्णन के विचार बताए हैं। कृष्णन को जवाब तो आप ही को देना है।
0: तो मेरा उत्तर एकदम ना है।
2: ये क्या मम्मी, इतने बड़े मामले पर तुमने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया, कुछ तो विचार करिए।
0: अब विचार क्या करना है? कृष्णन अपनी जाति का नहीं है बस।
2: ओह मम्मी, अच्छे लड़के के लिए आप 2 सालों से कितनी दौड़ धूप कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं आप लोग, और जब वो मिल गया तो जाति बिरादरी के झंझट में उलझी।
0: वसुधा तेरी बातों से विद्रोह झलक रहा है।
2: विद्रोह नहीं मम्मी, कुएं से निकलकर विशाल सागर को अपनाने की विचारधारा है ये। अब देखो ना मम्मी, मेरे लिए लड़का चुनने के लिए आपके सामने ये बंधन है कि अपनी जाति के सीमित लड़कों में से ही किसी एक का चुनाव करो, और फिर चाहे वो योग्य हो या ना हो, मुंह खोलकर लंबा चौड़ा दहेज मांगते हैं, लड़की के माँ बाप से अनुचित मांगे करते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है कि सारी बुराई के होते हुए भी लड़के इसीलिए स्वीकार किए जाते हैं कि वो अपनी जाति के विशेष हैं, और सीधा सरल और सुयोग्य कृष्णन इसलिए त्याज्य कि वो अपनी जाति का नहीं है। फिर ऐसी बात करती हो मम्मी।

0: नहीं बेटा, कुछ भी हो, जाति में इज्जत तो रहती है।
1: इज्जत? वाह मम्मी, तुम्हारी लड़कियां दहेज के आग में जलेंगी। लड़के वालों के दरवाजे से अपमानित होते रहना तो भी उफ ना करना, और वो कृष्णन तुम्हें पूरे सम्मान से बिना दहेज तुम्हारी लड़की को पत्नी बना रहे हैं, तो तुम्हें ये स्वीकार नहीं। ये गलत है मम्मी।
0: नहीं नहीं इसमें गलत क्या है, ये तो सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज है।
1: चले आ रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तमाम बुराइयों के होते हुए भी चलते रहना चाहिए। मम्मी, अगर तुम मुझे सुयोग्य हाथों में देना चाहती हो तो तुम्हें ये सड़ी गली मान्यताएं तोड़नी ही होंगी। और फिर ये अटल सत्य है कि मेरे लिए कृष्णन से सुयोग्य और कोई नहीं होगा।
0: वसुधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा जो लड़का देखने उदयपुर गए हैं, वो लड़का भी डॉक्टर ही है।
1: डॉक्टर है तभी तो खूब दहेज मांगेगा, और पापा की सामर्थ्य से वो बाहर होगा, वो अपमानित होकर लौट आएंगे।
0: तो तुझे उससे क्या मतलब?
1: मुझे मतलब क्यों नहीं, मेरे पापा दर दर भटकेंगे, अपमानित होकर लौटेंगे, और मुझे कोई मतलब नहीं। जिन पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे शिक्षा की अमूल्य दौलत दी, खुद दुख उठाकर मेरी इच्छाएं पूरी की, उनके अपमान से मुझे दुख नहीं होगा मम्मी। क्यों, मुझ में भावनाएं नहीं है? ये आपने कैसे सोच लिया मम्मी कि मुझे कोई मतलब नहीं है? आप कैसे सोचती हैं मम्मी ऐसा?
0: नहीं नहीं बस, रो मत बेटी, रो मत। मैं तो कह रही थी तुझे अच्छा घर और बार देने के लिए अगर हमें कुछ तकलीफ या अपमान भी सहना पड़े तो हम वो भी सह लेंगे।
1: और आपको परेशान अपमानित देखकर भी मैं अपनी गृहस्थी में खुश रह सकूंगी, यही ना?
0: एक तरफ से यही समझ ले।
1: नहीं मम्मी, ढेर सारा दहेज देकर मेरे लिए वर खरीदने की कोशिश में कर्ज के बोझ तले मत दबो। मुझे तो ऐसी शादी करनी है जिसका आधार प्रेम हो, लालच नहीं, सम्मान हो, अपमान नहीं।
0: बेटा वस्ता, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते।
1: वो अंधा प्रेम होता है मम्मी, जो क्षणिक आवेग में किया जाता है। मैंने तो बड़े सोच विचार के बाद कृष्णन जैसे व्यक्तित्व को स्वीकारा है, और फिर कृष्णन को तो तुम भी संस्कारी लड़का मानती हो ना मम्मी?
0: तुम ये सारी बातें अपने पापा को भी समझा पाओगी वसुधा?
1: जहां तक हो सके तुम ही समझा दो ना मम्मी, वरना मुझे तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी।
0: और अगर उन्होंने ना कर दिया तो बेटा?
1: तो समझूं कि मुझ में आत्मविश्वास था ही नहीं।

0: पापा।
1: ओ वसुधा आओ बेटे।
0: पापा आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही जरा लाइट चालू करने में आलस कर गया था। ठहरो मैं अभी जलाता हूँ।
0: आप रहने दो मैं जला देती हूँ। अब बताओ पापा आप क्या सोच रहे थे?
1: मैं कुछ भी तो नहीं।
0: नहीं पापा मुझसे छुपाओ मत। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं क्योंकि मैंने मम्मी से कृष्णन के लिए बहस की।
1: अरे मैं तो उसके लिए तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने अपनी आसपास की घटनाओं से इतना कुछ सीख लिया है और अपने पापा की परेशानी को समझा। फिर भी बेटा तूने गलत कहाँ कहा था। उदयपुर वालों ने सीधे 15 तोले सोना, घर की सजावट का सामान और 10,000 रुपये नगद की मांग कर ली। और इस पर भी ये सुझाव कि बारात 3-स्टार होटल में ही ठहरेगी।
0: ये सब इसलिए ना पापा कि लड़कियों के माँ बाप को जाति बिरादरी के सीमित लड़कों में से ही किसी को चुनना पड़ता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं अपने लड़कों की मांग अधिक है इसलिए उनके भाव बढ़ा दो। इस तरह विवाह को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। अब पापा क्या हम उनकी अनुचित मांग के आगे सर झुका दें, विवाह को व्यावसायिक होने दें? क्या हम चुपचाप सब सहते रहें?
1: नहीं नहीं बेटा हमें तो विरोध करना चाहिए।
0: तो फिर पापा आप कृष्णन को स्वीकार कर लेना।
1: कर तो लो बेटी पर लोग क्या कहेंगे?
0: लोग तो उस समय कहेंगे जब आपके विरोध के होते हुए भी मैं अपना घर बसाऊं। अगर आप अपने हाथों सहर्ष कर देंगे तो कोई क्या कहेगा? और फिर भी कहे तो आपके पास उत्तर होगा।
1: क्या?
0: यही कि आपने

0: मेरी खुशी के लिए ये सब किया है?
1: पर बेटे
0: ना पापा, अब आप कमजोर मत पड़िए, प्लीज हाँ कर दीजिए ना पापा, मेरी खुशी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज पापा।
1: ठीक है बेटे, मैं कृष्णन से मिलूंगा बस।
0: पापा आप बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, अच्छे पापा। और नहीं मिलूं तो श्रीमती वसुधा कृष्णन क्या कहेंगी?
0: तब भी वसुधा यही कहेगी कि पापा बहुत अच्छे हैं।

नैहर छूटो जाए। अभी आपने अरविंद नीमा द्वारा लिखित यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे जटाशंकर शर्मा। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत करती हूँ। मैं पूजा नारानिया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला गीत दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी, इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत हम आपकी है कौन फिल्म का, लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें। देव कोहली की गीत रचना है और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: कभी कभी मिलती है हकुड़ी मेरी,
1: ओ कुड़ी मेरी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है।

0: हाय।
1: सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गीत, फिल्म का नाम है चमेली। इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश चांडिल्य का संगीत।

फिल्म चमेली से ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने

0: की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड

0: रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, फिल्म का नाम अनुरोध।

श्रोताओं, कल कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 पर केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, और रात 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर। आप ज़रूर सुनिएगा आज 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित है, क्योंकि आज है अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, बैराग फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट

0: के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, आपको सुनवा रहे हैं अब आनंद बख्शी के बोलों को। सुरों में ढाला है SD बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने ये गीत फिल्म चुपके चुपके से।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चरस से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तुम की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में सुनिए उपासना फिल्म का ये गीत, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश चितचोर इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमलता की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

नीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह। और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला, और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की इस शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू सिंह।

इस गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे,

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन,

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का, धन

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान,
1: वीको वज्रदंती।
3: प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, हाँ प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।
4: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता। उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

0: कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी।
1: कभी

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से ताल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते हैं।

0: पूरी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ।
1: एक उम्र के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो। हाँ, बस सही हो।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज की होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है, और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।

0: इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
3: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

0: कि आज तुम्हें क्या हो गया है। तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल नादान बड़ा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग

खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि AI के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।